ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 8 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 9 AM इन इंडिया। Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 नून इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

लो कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। भैरो बिकम्स बैरन एंड बैरन बिकम्स भैरो बिकॉज दे माइंड द वेरी नैरो।

0: चल डालो।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

दर्द। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: अरे आज तो तुम शहर जाने वाले थे, गाड़ी छूट गई क्या?
1: छूटी नहीं, छोड़ दी। चलती गाड़ी से किसी ने खींच कर उतार दिया मुझे।
0: किसने?
1: तुमने।
0: मैंने? मैंने कैसे?
1: तुम्हारी यही पुकार कल रात मैंने सपने में सुनी थी और इसी पुकार ने चलती गाड़ी से मुझे उतार दिया। जा रहा था शहर नौकरी करने और जो काम करना नहीं चाहता था वो ही करने के लिए राजी हो गया।
0: कौन सा काम?
1: डोली उठाने का। अब रोज यहां आया करूंगा तुम्हारी पुकार सुनने के लिए। क्या हो गया तुमको?
0: मुझको कुछ नहीं हुआ, तुमको हो गया।
1: हा? मुझको?
0: हाँ हाँ तुमको।
1: कौन सा पागलपन देखा तुमने मुझ में? मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की?
0: पागलपन नहीं तो और क्या, दिन में मिली और रात को तुम्हारे सपने में आ गई। मैंने तो तुम्हें नहीं पुकारा था, फिर भी मेरी पुकार सुनकर चलती हुई गाड़ी से कूद गए। ऊपर से कहते हो रोज यही पुकार सुनने के लिए आया करूंगा, आखिर क्यों?
1: इसलिए कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
0: प्यार? बस बस रहने दो, एक बार मिलने से प्यार हो जाता है क्या?
1: यूं तो प्यार बरसों तक भी मिलने से नहीं होता, पर अगर होता है तो एक ही मुलाकात में हो जाता है।
0: अपने दिल के कोरे कागज पर कहानी मत लिखो, वरना ये परेशानी उम्र भर

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: नजर न लगा दीजिए।
1: अजी हम तो आपकी नजर के मारे हुए हैं।
0: तो फिर हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं?

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल शो आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार 90s एंड न्यूज स्पेशल में सुनिए 1986 से लेकर आज तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।
1: हाय, हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर बहुत ही प्यारा शो जिसका नाम है स्टार ओल्ड इज गोल्ड। यस, आज ओल्ड इज गोल्ड गाने की बरसात होने वाली है और इस बरसात में भीगने के लिए आप सब तैयार हो जाइए। लेकिन सबसे पहले मेरी पसंद जरूरी है ना, इंजॉय कीजिए इस गाने को। आते हैं, आपका वेलकम करते हैं।

बिल्कुल, हमारा दिल है, हमारा दिल है, हमारा दिल है। वैसे बहुत से दोस्त जुड़ चुके हैं, सभी का वेलकम करते हैं। सबसे पहले जुड़ने वाले हमेशा की तरह हमारे सरफू भाई सरफराज पटेल जी जुड़ चुके हैं साउथ अफ्रीका से। वेलकम करते हैं आत्माराम पाटिल जी, वेलकम करते हैं आपका भी। और साथ ही साथ हमारे दीपक कुमार गायकवाड़ जी, वेलकम करते हैं आपका भी। और रवि आर के रवि जी जुड़ चुके हैं, तो वेलकम करते हैं। और इनका जन्मदिन है, तो जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, आप जियो हजारों साल। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि यहाँ पे काजल झक्का जी, यानी काजल झा जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं हम। राधा कृष्ण गोप जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि एमडी जलील जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है जलील जी। और मंगेश देशमुख जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ जुड़ने वाले हमारे दोस्त हैं अशोक देशमुख जी, बहुत बहुत वेलकम है, नमस्कार आपका भी। और सर्वेश भगत जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और एमडी गुलबाज जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। साथ ही साथ गजानन सुलकार जी भी हैं, वेलकम करते हैं। और अमीना इब्राहिम जी यूएस से जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। और सर्वजीत शेट्टी जी फाजिलका पंजाब से, आपका भी वेलकम है। और प्रियंका जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी प्रियंका जी। साथ ही साथ यहाँ शिल्पा बहन जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी शिल्पा बहन जी। और सुनील कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है सुनील कुमार जी। साथ ही साथ हमारे ये गीता शरण जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। और अगर मैं यानी कि चैट बॉक्स में नजर डालूँ, तो चैट बॉक्स में हमें दिख रही हैं आरजे सोनी जी, शाहनवाज खान सर जी, और एमडी गुलबाज जी, धर्मेंद्र मोहन जी, और अभी तो फिलहाल मुझे इतने लोग दिख रहे हैं, आगे अगर देखेंगे तो मैं उनका नाम ज़रूर लूँगा। और बहुत से दोस्त को मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ एप्लीकेशन से ही मैसेज करें। एप्लीकेशन से मैसेज करने का तरीका बहुत ही आसान है, जहाँ पे सबसे नीचे वहाँ पे कुछ आइकन्स बने होंगे, एक होगा होम, उसके बाद अपकमिंग होगा, अपकमिंग के बाद पॉडकास्ट होगा, और पॉडकास्ट के बाद होगा मैसेज। वहाँ पे मैसेज पर क्लिक करते हैं, और उसके बाद होता है मोर, यानी मोर में जाकर आप इन चैट में जाते हैं, उससे पहले है मैसेज वाला ऑप्शन, वहाँ पे मैसेज पर क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद एक छोटा सा ऐड देखना पड़ेगा 90 सेकंड का, वो आधा घंटे के लिए मतलब वैलिड रहता है। और वहाँ पे ऐड देखिएगा, उसके बाद से क्या होगा कि आप आधे घंटे तक लगातार अनलिमिटेड मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी

कोई ऐड नहीं आएगा, फिर आधे घंटे जैसे कंप्लीट होंगे फिर एक ऐड आएगा 90 सेकंड के लिए। लेकिन अगर ऐड आएगा और ऐड के साथ साथ आपके रेडियो रुकेगा नहीं, क्योंकि वहां पे एक वॉल्यूम का आइकन होगा, वहां पे क्लिक कीजिएगा तो बिल्कुल आपका रेडियो चलता रहेगा, भले ऐड चलता रहेगा नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका रेडियो रुकेगा नहीं। ओके, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज करते हैं और आप सबके प्यारे प्यारे गाने को सुनवाते हैं। तो सबसे पहले आज जो मैं गाना लेने वाला हूँ वो मीना इब्राहिम जी का लेने वाला हूँ। सुनवाते हैं इस गाने को। यूएसए डिमांड आई है।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। नंदलाल यादव जी जुड़ चुके हैं गाजीपुर यूपी से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और जितेंद्र जी ये भी जुड़ गए हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। जितेंद्र जी के साथ साथ जुड़ने वाले कौन दोस्त हैं?

नमस्ते जी। तो और यहाँ पे जुड़ चुके हैं सुनीता गोप जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सैकला झारखंड से, और गोविंदा खंडाटे जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। मीना जी लिखते हैं कि मेरे रिक्वेस्ट को प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं। और यानी कि प्रीति रायदास जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और इसी बात पर अगला जो डिमांड प्ले करने वाला हूँ राधा कृष्ण गोप जी का, क्योंकि मैं एक राजा हूँ, है कि नहीं? एंजॉय कीजिए इस गाने को। मैं एक राजा हूँ।

0: बिल्कुल, मैं एक राजा हूँ और तू एक रानी है। वैसे भिड़वे भी बहुत सारे आ चुके हैं। आत्माराम जी लिखते हैं कि ये पसंद बहुत ही पसंद आई है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे पीकू राय जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं पीकू राय जी आपका। और गजन सरकार जी लिखते हैं कि ये मीना इब्राहिम जी, ये मीना इब्राहिम जी नहीं है, ये मीना जी थी वो, मतलब यानी मीना इब्राहिम जी है वो हमारे यूएस वाली है, हाँ उनकी पसंद बेहतरीन लगी। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। और यहाँ पे इन विष्णु जी लिखते हैं कि मैं भी प्रोग्राम से जुड़ चुका हूँ, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और राधा कृष्ण को देखते हैं कि मेरा गाना बजाने के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ मंगेश देशमुख जी ये कहते हैं कि नमस्ते, मैं भी जुड़ गया हूँ। राधे राधे, वेलकम है आपका भी। और प्रियंका जी क्या कहती है?
1: गुड इवनिंग अमन जी।
0: गुड इवनिंग।
1: सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिलिया हमारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिलिया कोई शक हमारा दिल है। ओ,
0: अब तो आपकी मिथुन भी हो गई। ओके जी, वेलकम जी आपका। और साथ ही साथ यहाँ पे मीना जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच, ये गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। साथ ही साथ यहाँ पे सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं।
2: आरजे अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
2: मीना इब्राहिम जी और एक भाई अपने गाने में शामिल किए, उनको धन्यवाद देते हैं। और रवि, आरजे रवि जी का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू, इसको उनको खूब खुश रखे, आवाज रखे, यही दुआ देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं।
0: धन्यवाद। और आपका और जुड़ चुकी है मनीषा शर्मा जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका, बहुत दिन बाद जुड़ी हैं। और सुनील कुमार जी ये कुछ कहते हैं।
3: अमन भैया नमस्कार प्रणाम, मैं सुनील कुमार बांका बिहार से जुड़ गया हूं आपके प्रोग्राम से। और आज आर के रवि जी की का जन्मदिन है, तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएँ। और सभी दोस्तों को सावन के चौथे एवं अंतिम सोमवार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
0: धन्यवाद आपका भी। और एमडी गुलबाज जी लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, बहुत ही प्यारा गाना लगा है। और गीता शरण जी लिखती हैं कि बहुत ही सुंदर गाना है जी, बिल्कुल। और ओके। और यहाँ पे दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि इनका मैसेज अली नहीं खोला है, हाँ ये लिखते हैं कि मंदिर में बज रही घंटियां और मस्जिद में हो रही अजान और रेडियो हॉटस्टार पर बज रहा है हमारा प्यारा हिंदुस्तान, वाह वाह क्या बात है। फिलहाल अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो मेरे किस दोस्त का है, ये गाना है बहुत ही प्यारा, मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये गाना, और अब्दुल जब्बार अंसारी जी का। सुनना चाहते हैं, एक था गुल और एक थी बुलबुल, सच में कहा।

0: तो
1: बिल्कुल प्यार गुलो बुलबुल सा करना, प्यार गुलो बुलबुल सा करना, प्यार गुलो बुलबुल सा करना।
2: आरजे अमन सर जी, आरजे रवि जी का जन्मदिन का आरजे
1: नहीं है, आरके हैं, आरके, आरके।
2: ईश्वर उनको खूब खुश रखे, आबाद रखे, यही ईश्वर से प्रार्थना कर।
1: धन्यवाद। आरजे नहीं है, आरके हैं, आर फॉर रवि, के फॉर किरण। ओके ओके ओके। फिलहाल यहाँ पे जितेंद्र जी लिखते हैं कि ये नाइस सॉन्ग सुनने को मिला है, मजा आ गया सुन के। और यानी ये क्या नाम इनका, हाँ पिकू राय जी लिखते हैं कि एक था गुल और एक थी बुलबुल, मस्त गाना मुझे लगा है सुनने को, मैं धन्यवाद। गजानंद जी लिखते हैं कि एक था गुल और एक थी बुलबुल वाले गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम। और अर्पिता जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है अर्पिता जी आपका भी, और बहुत दिन बाद आई हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। और आत्माराम पाटिल जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। नीतू जी लिखती हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है जी, नीतू जी। और मनीषा शर्मा जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है जी, मुझे पता है। रवि लोधी जी जुड़ चुके हैं ये मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी रवि लोधी जी। निशांत राय बोले जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। और प्रियंका जी क्या कहती हैं, सुनते हैं।
3: अमन जी ये सॉन्ग भी बहुत ही अच्छा था।
1: अच्छा,
3: एक था गुल और एक थी बुलबुल, अच्छा सॉन्ग था। इस सॉन्ग को सुन के मुझे प्रीति जिंटा और एक सनी देओल की जो मूवी है उसका सॉन्ग याद आ गया है। और मैंने भी एक सॉन्ग की फरमाइश भेजी है।
1: बिल्कुल, जब जब टाइम आएगा तो जरूर मैं प्ले करूंगा, टेंशन मत लीजिए। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि इस शानदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। शाहनवाज खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब डिमांड था। और फिलहाल अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ, शायद बबीता जी का सुनवाता हूँ पहले, क्योंकि ये क्या करती है, मैसेज में अपना सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजती है और मैं भुलक्कड़ इंसान भूल जाता हूँ ना। तो फिलहाल बबीता जी के गाने को हम लोग सुनते हैं। क्या सुनवाती हैं बबीता?
4: नमस्ते अमन सर जी, मैं ये गाना भेज रही हूँ, मूवी का नाम है दो दिलों का दास्तान, और गाने के बोल भी इसी तरह से हैं, मैं ना रही तू ना रहा, लो शुरू हो गई दो दिलों का दास्तान। और इस गाने में आपको ऑलरेडी हिसार के सारे दीवाने दीवानी को शामिल करती हूँ, सुनवा देना, धन्यवाद।
1: गाना तो मैं जरूर सुनवाऊंगा आपका, दो दिलों की दास्तान। और पता है मैंने गाना डाउनलोड भी किया था, लेकिन ये कभी कभी क्या होता है ना, मतलब कभी कभी वो अच्छे से डाउनलोड नहीं हो पाता है ना। फिलहाल नो प्रॉब्लम, मैं इस गाने को दोबारा डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ, दो दिलों की दास्तान का, और थोड़ा सा समय लग सकता है, और नो प्रॉब्लम, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन अब जब आपका नाम मैंने ले लिया है तो गाना तो मैं आप ही का प्ले करने वाला हूँ फिलहाल इस एड के बाद। ओके, फिलहाल एड सुनिए, तब तक हम आपके गाने को लेकर आते हैं।
5: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल शो आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार 90s एंड न्यूज स्पेशल में सुनिए 1986 से लेकर आज तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाती रहो दिल से।
1: ओके जी, तो फिलहाल दो दिलों के दास्तां को मैं आपको सुनवा रहा हूँ, इंजॉय कीजिएगा।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बना दिया। एक्चुअली आजकल पता नहीं क्या हो गया है, लग रहा है कंप्यूटर को दोबारा फॉर्मेट करना पड़ेगा, क्योंकि यानी पहले इसी आवाज़ में मतलब बहुत अच्छी आवाज़ आती थी, लेकिन अब पता नहीं क्या इसमें प्रॉब्लम है हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल तो देखना पड़ेगा, अभी फिलहाल इसी पर मैं लेकर चलता हूँ। और नीतू जी लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया गाना चल रहा है जी, और साथ ही साथ यहाँ पे आर्य सिंधे जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, गांधीनगर गुजरात से। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, इनकी सुनते हैं।
1: अरजय अमन सर जी, बबीता जी अपने गाने में शामिल किए हैं, आर के रवि जी थे।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: गलती हो गया, सॉरी सर।
0: आर के
1: रवि जी, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं।
0: धन्यवाद आपका भी। और यहाँ पे देवराय जी जुड़ चुके हैं और राय परमा जी जुड़ चुके हैं, आप दोनों का वेलकम करते हैं। राजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है। और ये देवराय जी लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे राय परमा जी लिखते हैं कि रघुवा के जन्मदिन पर खुशियों के बहार हो, हर दिन रघुवा के चेहरे पर मुस्कान अपार हो, रघुवा की जिंदगी में सफलता के चांद चमकता रहे, और हैप्पी बर्थडे आर के रवि जी, यानी करवा कि अपन हर सपना साकार हो। वाह वाह क्या बात है। और देवराय जी लिखते हैं कि आर के रवि जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी वाला बर्थडे। बिल्कुल। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि अब तो हमारा हमराही बन गया है रेडियो हॉटस्टार, जो दीवाना बना दे। और प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, लिखते हैं बबीता जी की डिमांड बहुत ही शानदार लगी है। और रवि जी, आर के रवि जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मंगेश दशमुख जी लिखते हैं कि ये सभी गाने बहुत ही सुपर सुपर सुपर लाजवाब चल रहे हैं। और अशिल्पा बहन जी लिखते हैं कि नहीं हमें तो सही सुनाई दे रहा है, अच्छा सच में कहा। और यहाँ पे पीकू राय जी लिखते हैं कि बबीता जी के पसंद का गाना एक नंबर लगा है, अच्छा जी। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि आपकी आवाज़ कम, हाँ बढ़ा दिया है अभी, मेरे ख्याल से ठीक आ रही होगी आवाज़। ये फीडबैक सुनते हैं।
2: अमन भैया नमस्कार, मैं सुनील कुमार बांका बिहार से, और सुनीता गोप जी का और बबीता जी का दोनों की लाजवाब पसंद मिली जुली बहुत ही मखमली आवाज़ों में, एक में तो लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर थी, और ये दोनों की आवाज़ें बहुत ही लाजवाब।
0: धन्यवाद देते हैं सुनील कुमार जी। और मीना जी लिखते हैं वाह क्या बात है, क्या शानदार डिमांड है। गजानंद जी लिखते हैं कि ये बबीता जी की आवाज़, सॉरी बबीता जी की डिमांड बहुत ही अच्छी लगी शब्बीर कुमार की आवाज़ में, आशा भोसले की आवाज़ में। और अर्पिता जी लिखते हैं कि ओके। और मोहन निवारी जी लिखते हैं कि सुपरहिट सुपरहिट सुपरहिट प्रोग्राम चल रहा है। और ये फिर
3: नमस्ते अमन सर जी, मैं अनिल कश्यप सिवान बिहार से जुड़ गया हूँ, और जितने सारे लोग जुड़े हैं सबको मेरा प्रणाम है, और विशेष रूप से आर के रवि जी को जिनका आज बर्थडे है, तो उनको जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं हमारे तरफ से, और पूरा रेडियो टीम जो भी हॉट स्टार सुन रही है सभी की ओर से उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं भी गाना अपना सॉन्ग रिक्वेस्ट में भेज दिया हूँ, थोड़ा सा लेट से जुड़ा हूँ, इसके लिए थोड़ा सा दुख भी है हमें। थैंक यू।
0: कोई बात नहीं जी, वेलकम है, देर आया दुरुस्त आया है ना। निशान राय बोले लिखेंगे बहुत ही प्यारा गाना है। फिलहाल नंदलाल जी के पास चलते हैं और आपका जवाब किया ये गाना सुनना चाहते हैं, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं। अशोक कुमार जी, अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि अभी आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। अच्छा, मे बी। और यहाँ पे प्रियंका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है, मजा आ रहा है सुन के। और सर्वेश नगर जी क्या कहते हैं, इनके सुनते हैं।
1: अरजय अमन सर जी, नंदलाल यादव जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं,
0: थैंक यू सो मच आपका भी। और राधा कृष्ण को देखते हैं कि अब आवाज़ बम बम आ रही है। अच्छा, ये क्या कहते हैं, इनके सुनते हैं।
2: एक्चुअली रेडियो हॉट स्टार का भी कोई जवाब नहीं है और ना ही कोई दूर दूर तक है अभी तो। मेरा प्रेम और सारे लिसनर्स का प्रेम ऐसे ही बना रहे। गाना बहुत मस्त चल रहा है, ये गाना भी लाजवाब था। थैंक यू,
0: वेलकम वेलकम वेलकम भाई आपका अनिल कश्यप जी। और साथ ही साथ यहाँ पे यहाँ मीना इब्राहिम जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना है, बहुत अच्छा लगा है ये गाना सुनकर। शाहनवाज खान लिखते हैं कि ये फर्ज की जंग फिल्म का लाजवाब फरमाइश मोहम्मद रफी की आवाज़ में, शानदार लगा है। अजय कुछ जी लिखते हैं कि हमें भी जुड़ गया हूँ जी, वेलकम है अजय कुछ जी आपका भी। और बबीता जी लिखते हैं कि नमस्ते अमन सर जी, गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपका। और नंदलाल जी लिखते हैं अमन जी आपने मेरा गाना प्ले किया, बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि नंदलाल जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है, धन्यवाद देते हैं। और इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो आरजे सोनी जी का प्ले करने वाला हूँ। आरजे सोनी जी सुनना चाहती हैं आज पल पल दिल के पास तुम रहते हो, बिल्कुल ये गाना मेरा दिल के पास है, बिल्कुल। थैंक यू आरजे सोनी जी इतने प्यारा गाना डिमांड करने के लिए।

0: बिल्कुल इन पल पल दिल के पास तुम रहती हो, तुम रहती हो तुम।
1: आरजे सोनी जी अपने गाने में शामिल किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी थैंक यू।
0: वेलकम जी आपका। और अब्दुल जब्बार अंसारी लिखते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है सर जी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच, और मेरे गाने को प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूलाल अनजाना जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं बाबूलाल अनजाना जी। और शाहनवाज खान जी लिखते हैं कि ये ब्लैक मेल का ओल्ड इज गोल्ड सुपर हिट डिमांड के लिए थैंक यू सो मच आरजे सोनी जी। ओके जी, और यहाँ पे आर के क्या नाम है, एनपी कुराय जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी के पसंद का गाना मुझे बहुत ही पसंद आया, ये पल पल दिल के पास तुम रहते हो। काजल झक्का जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, थैंक यू आरजे सोनी जी। और प्रियंका जी क्या कहती हैं, इनकी सुनते हैं।

0: माय गॉड,
1: तुम रहते हो। थैंक यू,
0: वेलकम जी आपका। और यहाँ पे गजानन जी लिखते हैं कि पल पल दिल के पास तुम रहते हो, ये किशोर कुमार की आवाज में बहुत ही प्यारा गाना था, बहुत अच्छा लगा है। मोहन हमारे जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच आरजे सोनी जी। और मीना इब्राहिम लिखते हैं कि ये गाना मुझे बेहद पसंद है, बहुत ही प्यारा गाने के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि बेहतरीन डिमांड के लिए थैंक यू सो मच आरजे सोनी जी। और मुबारक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत भाई मुबारक हो, आप जुड़ गए, वेलकम करते हैं आपका भी। इसी बात का जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो काजल झक्का जी का है। काजल झक्का जी क्या सुनवाना चाहती हैं, सुनते हैं इनकी ऑडियो।
2: आप दुआ हो मेरी सदा के लिए, आप दुआ हो मेरी सदा के लिए, मैं जिंदा हूँ आपके दुआ के लिए।
0: वाह वाह वाह वाह।
2: आप दुआ हो मेरी सदा के लिए, मैं जिंदा हूँ आपके दुआ के लिए। कर लेना गाख सिकवा मुझसे, कर लेना गाख सिकवा मुझसे, मगर कभी खफा न होना खुदा के लिए, कभी खफा न होना खुदा के लिए। नमस्ते, गुड इवनिंग।
0: नमस्ते, नमस्ते।
2: मैं काजल बोल रही हूँ सीतामढ़ी से, मुझे भी एक सॉन्ग सुना दीजिए, सॉन्ग में भेज दे रही हूँ। और ये सॉन्ग मैं सुना दूंगी सबसे पहले मिट्ठू मियाँ जी को, आपको,
0: थैंक यू सो मच,
2: वंशिका जी को, सोनी जी को, आकांक्षा जी को, जितने दीवाने दीवानियाँ रेडियो हॉट स्टार से जुड़ी हुई हैं, जितने दोस्त आपका प्रोग्राम सुन गए हैं, सभी को सुना दूंगी।
0: ओके, एंजॉय कीजिए, गाना प्ले कर दिया मैंने और ये गाना मुझे इतना पसंद है।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं। सर्विस भगत जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, काजल झा जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं।
0: वेलकम जी। और यहाँ पे इन प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच काजल झक्का जी। और प्रियंका जी क्या कहती हैं सुनते हैं।
2: एक छोटा सा घर हो रहे दोनों वहाँ,
0: अच्छा।
2: जहाँ

0: हो इतनी सनम। थैंक यू।
1: वेलकम जी आपका। और यहाँ पे ये पीकू राय जी लिखते हैं कि मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, गाना मुझे बहुत ही पसंद आया। धन्यवाद देते हैं काजल झक्का जी को। और अजय कुछ जी कहते हैं कि बहुत ही हिट सॉन्ग है जी, सुपर हिट सॉन्ग है। ये क्या कहते हैं, इनके सुनते हैं।
2: पल पल दिल के पास आरजे सोनी जी का ये गाना बहुत ही अच्छा लगा, बहुत हार्ट टचिंग सॉन्ग भी है ये। और ये गाना जो चल रहा है अभी, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, ये भी इस कुछ कम नहीं है, ये भी मस्त सॉन्ग है। थैंक यू सर प्ले करने के लिए।
1: ओके जी, वेलकम करते हैं आपका भी। और यहाँ पे मोहन हमारे जी लिखते हैं सुपर हिट डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। गजानंद जी लिखते हैं कि काजल झक्का जी की पसंद बहुत ही झकास लगी है। और राधा कृष्ण गोप जी कहते हैं कि बहुत ही प्यारी डिमांड है, थैंक यू सो मच काजल झक्का जी। ये क्या कहती है, इनके सुनते हैं।
3: बिन तेरे एक पल भी मुझसे रहा नहीं जाए, बिन तेरे एक पल भी मुझसे रहा नहीं जाए, ये दूर दूर रहना, ये दूर दूर रहना अब सहा नहीं जाए। हाजिर है जान, जान मन जान की कसम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। मैं काजल झा जी का शुक्रगुजार हूँ और दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे बीते हुए दिनों को पुनः याद दिलवाने के लिए।
1: अच्छा,
3: जो कि ये गाना मेरी जिंदगी से बहुत ताल्लुकात रखता है।
1: ओ माय गॉड,
3: उनको दिल से धन्यवाद है। मैं सुनील कुमार बांका बिहार से।
1: धन्यवाद देते हैं फीडबैक देने के लिए। सुनीता गोप जी लिखते हैं अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए, और नेटवर्क काम नहीं कर रहा, अच्छा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पे प्रियंका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा, अच्छा ठीक है ओके ये हो गया। और अर्पिता जी लिखते

हैं कि ये नजरों का क्या कसूर और तुम हो ही इतने प्यारे की मोहब्बत हो गई, वाह क्या बात है। और रवि जी लिखते हैं कि ये दुआओं का ये हंसी तोहफा मुझे जो आपने दिया है, दिल की गहराइयों से मैंने आपका शुक्रिया अदा किया है। बने रहे आपका और हमारा ये प्यार यूं ही यूं सदा। आपके रेडियो हॉटस्टार ने मेरे जन्मदिन को यादगार बना

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, पहले नींद की सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, सरजीत सेठी जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी। और इसी बात पर यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं, सरबजीत जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद देते हैं। और शाहनवाज खान जी लिखते हैं, सन्यासी फिल्म का गाना मुकेश और राधा की आवाज़ में लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया सुन के। और मोहन वाले जी कहते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है, बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और प्रियंका जी क्या कहते हैं, ये लिखते हैं कि ये सभी गाना बहुत अच्छा चल रहा है, सभी को धन्यवाद देते हैं। और राजेश कुमार लिखते हैं कि ये सरोजीत जी के पसंद मुझे बहुत ही सुपरहिट लगी है। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि वाह, नाइस सॉन्ग सुनकर मज़ा आ गया, चल सन्यासी मंदिर में।

0: और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये सरोजीत जी की पसंद औसम लगी, दिल खुश करने के लिए थैंक यू सो मच। और हुकुम चंद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। मीना जी से वाह वाह वाह क्या डिमांड है, थैंक यू सो मच। और ये क्या कहते हैं, इनकी सुन लेते हैं।
1: थैंक यू जी गाना बजा देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको और सभी दोस्तों को भी बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक देने के लिए, और सभी दोस्त के गाना बहुत अच्छे अच्छे बज रहे हैं। आपको भी थैंक यू शुक्रिया धन्यवाद, सभी दोस्तों को भी थैंक यू शुक्रिया धन्यवाद। मैं काजल सीतामढ़ी से आज का प्रोग्राम बोले तो
0: ओके जी, थैंक यू सो मच फीडबैक देने के लिए। अर्पिता जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना चल रहा है, धन्यवाद देते हैं। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये सर्वजीत शेट्टी जी की पसंद मुझे बहुत ही प्यारी लगी है। शिल्पा बेन कहती हैं कि चल सन्यासी मंदिर में गाना मुझे बहुत ही पसंद है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो प्रीति रायदास जी का है, ये सुनना चाहती हैं आने से उसके आई बहार, जाने से उसके जय बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। यस, एंजॉय कीजिए इस गाने को जो मुझे बेहद पसंद है।

बिल्कुल बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही सुपर सॉन्ग सुनने को मिला है ये प्रीति रैदास जी का, आने से उसके आए बाहर मजा आ गया इस गाने को सुनकर। ये क्या कहते हैं प्रियंका जी, सुनते हैं।

0: होगा। थैंक यू।
1: ओके जी, तो इस ये भी लाइन है इस गाने की, ये तो मुझे अब ढूंढना पड़ेगा इस गाने को। अच्छा, यानी कि पार्ट टू का लाइन है। थोड़ा सा इस गाने को सुनते हैं, फिर मैं फीडबैक शामिल करूंगा, क्योंकि मुझे ये लाइन अच्छा लगा। इसलिए इस लाइन के लिए मुझे थोड़ा सा गाना प्ले करना पड़ेगा। शायद हो सकता है ये सैड सॉन्ग भी हो सकता है, मे बी। सुनते हैं थोड़ा सा।

मेरी महबूबा सच में परियों की रानी है मेरी महबूबा। और शिल्पा बेंच लिखते हैं कि आने से उसके आए बाहर गाना बहुत ही प्यारा लगा है, बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं कि ये प्रीति रायता जी की गाना बहुत ही शानदार लगा है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए, उनको डिमांड करने के लिए। अजय कुछ लिखते हैं कि सुपर हिट गाने के लिए थैंक यू सो मच। और मोहन निवार जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए और आने से उसके आए बाहर, मजा आ गया सुन के गाने को। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि सच ए रोमांटिक वाइब एब्सोल्युटली, जी बिल्कुल। और अर्पिता जी लिखते हैं कि उदास नजरों में ख्वाब मिलेंगे, लिखती हैं कि उदास नजरों में ख्वाब मिलेंगे और कभी काटे तो कभी गुलाब मिलेंगे, और मेरे दिल की किताब को मेरी नजर से पढ़कर तो देखो कहीं आपकी यादें तो कहीं आप मिलेंगे। वाह वाह वाह वाह क्या बात है। और ये क्या कहते हैं इनके सुनते हैं।

0: से जैसे गिरता हो झरना जमी पे झरना।
1: ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, फिलहाल आपका ऑडियो कट गया है, नो प्रॉब्लम। और यानी और शानवाज जी लिखते हैं कि गाना दिल खुश हो गया है, और सुरों में तो जादू था ही, आवाज में सच्चाई थी, सुनकर दिल खुश हो गया है, बहुत बढ़िया गाना लगा, ओल्ड इज गोल्ड। और यहाँ पे गीता जी लिखते हैं कि वाह वाह वाह क्या गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है, दो ग्रुपों की डिमांड है, दो ग्रुप मतलब हमारे अशोक देशमुख जी का ग्रुप और गजानंद सलोकार जी का ग्रुप, आज दोनों ग्रुप इत्तेफाक से एक ही गाने की डिमांड आ चुकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अशोक देशमुख जी के ऑडियो को सुनते हैं, शायद उनका ऑडियो मेरे पास आया कि नहीं। हाँ आया है।
2: नमस्कार अमन सर।
1: नमस्कार,
2: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
1: वेलकम जी।
2: आज का थीम है स्टार ओल्ड इज गोल्ड, तो मुझे एक गीत सुनना है। फिल्म का नाम है सावन भादो और गाने का बोल है कान में झुमका चाल में ठुमका कमर पे चोटी लटके। ये गीत सबसे पहले आपको और आपकी सुंदरता की मूरत को और जितने भी हॉट स्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
1: ओके जी, और इसी गाने में हमारे सर्वेश भगत जी, आत्माराम पाटिल जी भी शामिल है। सर्वेश भगत जी का ऑडियो सुन लेते हैं।
3: जय अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
3: आज हमारा फरमाइश का फिल्म है सावन भादो और गाने का बल है कान में झुमका चाल में ठुमका कमर पे चोटी लटके।
1: बिल्कुल।
3: हाउ द स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरा जंदाहा जिला वैशाली बिहार से बोले, हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, ब्रजकिशोर भगत, आनंद शेखर, आनंद प्रकाश, सुनी कुमारी, मुनि कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनुस जी, आरजे अमन सर जी, सुंदरता की मूरत जी, आरजे आकांक्षा जी, आरजे वंशिका जी, आरजे सोनी जी, आरजे रत्ना जी, आरजे एम एस परमार जी, और सभी आरजे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर इसमें शामिल है, सभी को सुना दीजिए।
1: आत्माराम पाटिल जी हैं और गजानंद जी का पूरा ग्रुप है, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बनाने बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं। राहुल पासी जी लेते हैं कि अनिश्चित क्या है, बाहर वाला गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है, ये क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: जय मान सर जी, धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। हमारा सभी भाई का फरमाइश और खजाना सुलोका जी का पूरा ग्रुप का भाई, हमारा अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनुस जी और गजानन का सभी भाई अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू।
0: वेलकम जी आपका। और यहाँ पे ये प्रियंका जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना चल रहा है, थैंक यू सो मच। और पिकू राय जी लिखते हैं कि अच्छा सॉन्ग लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा है, ओके। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि दोनों ग्रुप के दोस्तों को धन्यवाद देते हैं इतना प्यारा डिमांड करने के लिए। और मंगेश देशमुख जी लिखते हैं कि मिले जुले ग्रुप की, दोनों ग्रुप की फरमाइश बहुत ही शानदार थी। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना सुनने को मिला है, धन्यवाद देते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय अमन जी को प्यार भर नमस्कार है, हम सभी साथियों को गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काजल झका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच। और गीता शरण जी लिखते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, थैंक यू सो मच। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि धन्यवाद अमन सर, आपने हमारी फरमाइश का गीत सुनवाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मैं सुनवाने वाला हूँ, दो दोस्तों की डिमांड है, यानी कि प्रमोद कुमार जी और अशोक पाल जी सुनना चाहते हैं ये प्यारा सा गाना, इंजॉय कीजिए।

0: मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी डिमांड है, थैंक यू सो मच इस बात पर। और संगीता अम्बुलकर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं संगीता अम्बुलकर जी आपका। और शनवाद जी लिखते हैं कि बहुत खूब, क्या बात है, जब एक ही गीत के दो दो ग्रुप की फरमाइश करें तो समझ लो कि वो दिल को छूने वाला है होगा। जी सच में इस गाने ने तो महफिल जमा दिया। और यहाँ पे पीकू राय जी लिखते हैं कि राइट, जब आप अच्छा ओके ठीक है। और फिलहाल यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय इन प्रमोद जी, नहीं ये इन प्रमोद जी का गाना नहीं था, अब अगला जो गाना आने वाला है वो इन प्रमोद जी का गाना आने वाला है, मुझसे गलती हुई है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसके लिए हम सॉरी। और ये लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अशोक पाल जी को। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि अशोक पाल जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और इन प्रीति रायदास जी लिखते हैं कि आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच, और यानी प्रमुख जी को भी थैंक यू बोल दीजिएगा, बिल्कुल बोल दिया है। और सभी दोस्तों को भी थैंक यू सो मच, और सभी ने मेरे गाने को पसंद किया, अच्छा लगा उन्हें, उन सभी को थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू सो मच, आपने मैसेज किया और मुझे लगा आप नहीं सुन रही हैं। और प्रियंका जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों गाना बहुत ही शानदार चल रहा है, धन्यवाद देते हैं। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: अमर सर जी, अशोक पाल जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और अर्पिता जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना चल रहा है, धन्यवाद देते हैं उनको। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि मुझे प्यार करो गाना मुझे मस्त लगा है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये प्यार मांगा था, मुझे गाना बहुत ही अच्छा लगा है। देवेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं देवेंद्र सिंह जी। और गजानंद जी लिखते हैं कि अशोक पाल जी का गाना मुझे बहुत ही पसंद है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है यानी प्रमोद कुमार जी का है, सुनवा दिया प्रमोद कुमार जी, इंजॉय कीजिए अपने गाने को।

0: बिल्कुल अब तेरा ठिकाना तो मिल गया है। फिलहाल अगला फीडबैक भी आ चुके हैं मेरे पास बहुत सारे, और प्रमोद को बोलते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमेशा जी गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और गोपाल परिदार जी लिखते हैं कि सारे गाने बहुत ही सुपर सुपर चल रहे हैं, और बाबूलाल जी लिखते हैं कि दोनों दोस्तों की डिमांड बहुत ही प्यारी लगी है, बहुत बहुत शुक्रिया। गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय ये प्रमोद जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई, धन्यवाद देते हैं उनको। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: जय अमर सर जी, प्रमोद कुमार जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और हमें अनिल कश्यप जी लिखते हैं वाओ क्या गाना चल रहा है, मजा आ रहा है सुन के। कैलाश झक्का जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा डिमांड है, धन्यवाद देते हैं। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है जी बिल्कुल। और प्रमोद कुमार लिखते हैं तो हो गया। और मीना जी लिखते हैं वाओ क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो सुनील कुमार बांका बिहार से सुना चाहते हैं, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, ये सिर्फ क्या चाहिए। इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: बिल्कुल मोहब्बत भरी एक नजर से देख लीजिए तो भाई दिल को सुकून मिल जाएगा, है कि नहीं। फिलहाल राहुल पासी जी लिखते हैं कि दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। गाना बहुत अच्छा लगा है। और साथ ही साथ बाबूलाल जी ये कहते हैं कि ये प्रमोद जी का डिमांड मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और साथ ही साथ गजानंद जी लिखते हैं कि ये सुनील कुमार जी की भी पसंद बहुत ही शानदार। सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, इनकी सुनते हैं।
1: आरजे अम्मा सर जी, सुनील कुमार जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी। और सुनील कुमार जी कहते हैं,
2: दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। अमन भैया आपका तहे दिल से शुक्रिया मेरे गाने को प्ले करने के लिए, और सभी दोस्तों का धन्यवाद दूंगा फीडबैक देने के लिए। मैं सुनील कुमार बांका बिहार से।
0: धन्यवाद आपका भी। और संगीता अम्बुलकर जी लिखते हैं कि लवली सॉन्ग है बहुत, और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं बहुत ही शानदार डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच। और गीता जी लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया गानों की रिक्वेस्ट है, थैंक यू सो मच। और गजानंद जी लिखते हैं, यानी प्रियंका जी और सुनील कुमार जी, ये सभी का गुनगुनाना अच्छा लगता है। राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये जंजीर मूवी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। निशान रायपुर लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। इसके बाद अगला जो डिमांड है वो संदीप सुतार जी का है। संदीप सुतार जी कहते हैं कि चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए इनको। अच्छा जी, ओके, तो इन्जॉय कीजिए इस गाने को, संदीप सुतार जी।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं। मंगेश दशमुख जी लिखते हैं कि ये सुनील जी के पसंद मुझे बहुत ही पसंद है, ये धन्यवाद देते हैं। और सौरेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: अजय अमर सर जी, संदीप सुतार जी अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू।
0: और यहाँ पे निशांत राय बोरे जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है, और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
2: अंधेरे के सन्नाटे को चीरती हुई एक ही आवाज, रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे।
0: धन्यवाद देते हैं भाई दीपक कुमार गायकवाड़ जी। गजानंद जी लिखते हैं कि चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए, बहुत ही प्यारा गाना है, मजा आ गया सुन के। और मीना जी लिखते हैं कि आई लव यानी कि किशोर कुमार की आवाज, मुझे आवाज उनकी बहुत पसंद है। और फरमाइश करने वाले दोस्त को भी धन्यवाद देते हैं। ये क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं।

0: चाहिए थोड़ा प्यार, थोड़ा प्यार चाहिए। ये किशोर कुमार की आवाज़ में बहुत ही लाजवाब सॉन्ग, संदीप सुतार जी की लाजवाब पसंद, उनको दिल से धन्यवाद है इतना अच्छा गाना पसंद करने के लिए और सुनवाने के लिए। मैं सुनील कुमार बांका बिहार से।
1: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए, बहुत ही अच्छा लगा गाना। और ये फीडबैक क्या कहती है प्रियंका जी?
2: अमन जी, मेरा सॉन्ग इतना टफ है क्या जो आप मुझे मेरा सॉन्ग नहीं सुना रहे?
1: ऐसी बात नहीं है, देखिए जब आपका नंबर आएगा जरूर प्ले हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। फिलहाल अगला जो डिमांड है वो राहुल पासी जी का है, सुनवाते हैं उनके पसंद का ये गाना, सोनी मेरी सोनी सोनी। गाना बहुत प्यारा है।

बिल्कुल, रब मुझे माफ करे और मेरा इंसाफ करे, क्योंकि रब से ज्यादा मैं नाम लेता हूँ। वैसे फीडबैक भी मेरे पास आए हुए, गजन जी लिखते हैं कि राहुल पासी जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद देते हैं उनको। और मीना जी लिखते हैं ये गाना मुझे बहुत ही लाजवाब लगा है और बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे ये लिखे प्रियंका जी लिखते हैं कि हाँ जी, एक दो गाने के बाद आपका गाना के नंबर आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और काजल झका जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा है। और राहुल पासी जी लिखते हैं थैंक यू अमन जी गाना प्ले करने के लिए। निशांत रायपुर लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा है। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि ये सोनी सोनी मेरी गाना बहुत ही पसंद है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। शनवाज जी लिखते हैं कि सोहिनी महिवाल का बहुत ही प्यारा डिमांड, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। मंगेश देशमुख जी लिखते हैं कि अर्जमन जी बहुत ही शानदार गाना चल रहा है, मजा आ रहा है सुन के। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि राहुल जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है। इसी बात पर जो डिमांड है वो रितु जी की है और रितु जी सुनना चाहती है बोल दो मीठे बोल सोनिए, ये भी गाना इसी फिल्म का है जो मुझे बेहद पसंद है, तो सुनवाता हूँ, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं। ओम नारायण राय जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और बाबूलाल जी लिखते हैं ये रितु जी के पसंद, मुझे बहुत ही पसंद आई, धन्यवाद देते हैं उनको। और काजल झका जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए। और राहुल पाचे जी लिखते हैं ये रितु जी का डिमांड बहुत ही शानदार लगा है। और गजानंद जी लिखते हैं रितु जी का पसंद का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। शाहनवाज खान जी लिखते हैं कि ये बैक टू बैक दोनों गाने एक ही फिल्म के बहुत ही लाजवाब सुपरहिट। इसी बात पर अगला जो डिमांड हमें शाहनवाज जी का ही आने वाला है। और मीना जी लिखते हैं वाह क्या बात है, बहुत ही शानदार गाना। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लाजवाब गाना है, बोल दे मीठे बोल सोनी है। और राजेश कुमार लिखते हैं कि ब्यूटीफुल चॉइस है। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि अमन जी आज का प्रोग्राम सुपर से भी ऊपर चल रहा है। और मेरी भी एक शायरी है कि बिना सूरज ढले रात नहीं होती, लिखते हैं कि बिना सूरज ढले रात नहीं होती, अब बिना सावन के तो बरसात नहीं होती, हमारा हाल तो ऐसा है कि आपको याद किए बिना रेडियो हॉटस्टार की शुरुआत नहीं होती। वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या बात है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे शाहनवाज जी का है। और शाहनवाज जी आपको पता है ना, सारे दोस्तों को डेडिकेट करते हैं अपने गाने को, तो सच में सुनवा दिया इनके पसंद का ये गाना।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। सच में गाना बहुत प्यारा था और आज बनते हैं ये आज के सॉन्ग ऑफ द डे विनर। तो यानी कि शाहनवाज जी एक गाना और सुन सकते हैं आप बिल्कुल ये फीडबैक।
1: आरजे अमन सर जी, शाहनवाज खान सर जी अपने गाने में शामिल किए हैं और सभी भाई और सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल करते हैं। सभी को भी धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं।
0: थैंक यू सर। वेलकम जी। और काजल झगा जी लिखते हैं कि ये हमें शाहनवाज जी का गाना बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। राहुल पासी जी लिखते हैं कि लागी छूटे ना, गाना बहुत ही प्यारा था।

और दिलजीत राज जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग है जी, बहुत बहुत वेलकम है दिलजीत राज जी आपका। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो यानी कि प्रियंका जी का है। प्रियंका जी ये सुनना चाहती हैं, अरे यार मेरी तुम हो गजब।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। और यहाँ पे दीपक को मैं गाय कुमार जी लिखते हैं कि यानी कि पुराने के रेडियो दिन वापस लाने के लिए रेडियो हॉट स्टार का नाम सबसे आगे। अच्छा, थैंक यू सो मच आपका। और ये क्या कहते हैं, इनके सुनते हैं।
1: अजय अमन सर जी, प्रियंका जी अपने गाने में शामिल किए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये तीन देवियों का गाना बहुत ही पसंद आया, धन्यवाद देते हैं। निशांत साहब लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग सुनने को मिल गया है। और गजानंद जी लिखते हैं कि अरे यार मेरी तुम हो गजब, घूंघट तो जरा, ये वाला गाना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में शानदार लगा है, मज़ा आ गया सुन के। और शहनवाज जी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी, आपने मेरे गाने को प्ले किया। और उन दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने गाने को पसंद करके फीडबैक दिया है। और ये गाना मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में। और दिलजीत राज जी लिखते हैं कि क्या गाना है सर जी, दिल खुश हो गया। इसी बात पर अगला गाना सुनिए, ये भी दिल खुश करने वाला है क्योंकि इसे सुनना चाहते हैं ओम नारायण राय जी, कि तेरे चेहरे में वो जादू है, घूंघट खुल चुका है अब।

0: और मेरे पास शानवाज जी का गाना आ चुका है, लेकिन वो गाना कौन सा है? काम करते हैं, मैं इन्हें अभी लगा यानी कि रेडियो हॉट के ऐप से कॉल लगा लेता हूँ, इनसे बातें करता हूँ, लिखते हैं कि धर्मात्मा का गाना उस ये किशोर कुमार की आवाज़ में बहुत ही अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। राहुल पासी जी लिखते हैं कि तेरे चेहरे में वो जादू है, गाना बहुत ही प्यारा है, सच में चेहरे में जादू तो है, देख के दीवाना हो गया हूँ मैं, है कि नहीं। और यहाँ पे अगला जो डिमांड, अच्छा यहाँ पे ये फीडबैक सुनते हैं क्या कहती हैं।
1: दाल के घुंघटा रूप को अपने और नहीं मैं छुपाऊंगी।
0: अच्छा क्यों?
1: सुन

0: फिर क्यों ना फिरूं झलकी, तुम परी तो जरूर हो पर बड़ी मशहूर हो। थैंक यू।
1: ओके जी, तो गाना सुनवा दिया हूँ आपका, और इसी बात पर यहाँ पे काजल झका जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा था, धन्यवाद देते हैं उनको। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और साथ में गजानंद जी लिखते हैं कि ओम नारायण राय जी के पसंद, तेरे चेहरे में वो जादू है, गाना बहुत ही प्यारा है। और साथ ही साथ यहाँ पे ओम नारायण जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी गाना प्ले करने के लिए। संगीता मुर्का जी लिखते हैं कि बहुत ही सुपर सुपर सुपर गाना है जी, बिल्कुल। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग चल रहा है। और आरती जी लिखते हैं कि ये खता मेरी ना थी फिर भी खता मेरी ही बताई गई, और खता बस इतनी थी कि मैंने वक्त मान ली, जब वक्त ना मिला तो थोड़ी सी शिकायत कर ली। अच्छा, बस खता इतनी सी थी कि मैंने अपने हिस्से की थोड़ी सी हक मांग ली। वाह वाह, ये थोड़ा सा मेरे ऊपर से गुजर गया, समझ में नहीं आया, लेकिन फिलहाल जो भी है अच्छा है। और गजानंद जी लिखते हैं कि शनवाज जी को विजेता बनने के लिए बधाई, फिलहाल इनको रेडियो हॉट स्टार के ऐप से कॉल लगाया जाए। अगर ये अपडेट किए होंगे तो जरूर कॉल लग जाएगी, ऐप को अपडेट किए होंगे तो, नहीं तो कॉल नहीं जा पाएगी। शायद मेरे ख्याल से ऐप अपडेट नहीं होगा इनका। नो प्रॉब्लम, मैं काम करता हूँ। शायद आई होप कि इनका यही गाना हो जो उन्होंने भेजा है, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए।

एक ही दिल है कितने बार जीतिएगा, क्योंकि ये गाना भी उसी लायक है, मतलब विनर बनाने लायक। लेकिन एक बार विनर बन चुके दोबारा तो बनाऊंगा नहीं। निशांत राय बोले जी लिखते हैं वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है बिल्कुल, और संगीता जी लिखते हैं ओ माय गॉड बहुत ही प्यारा गाना है जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और काजल जी लिखते हैं बहुत ही प्यारे गाने के लिए धन्यवाद देते हैं, और राहुल पासी जी लिखते हैं तुम्हारा चाहने वाला अभी दीवाना बाकी गाना बहुत अच्छा लगा है, और शर्मा जी देते हैं जी गाना मेरा यही है, थैंक यू सो मच। और आप अगर एप्लीकेशन को अपडेट किए होते तो सच में आपको कॉल लग गया था ऐप से ही। और जो भी दोस्त एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किए प्लीज अपडेट कर लें, एक अपडेट आने वाला है जल्दी, दुआ कीजिए कि जल्दी आ जाए। और प्रमोद जी लिखते हैं बहुत बेहतरीन चॉइस है, थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड है धर्मेंद्र मोहन भारती जी का है, सुनना चाहते हैं दिल की या आरज़ू थी कोई दिल रुबा मिले, इंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल दिल की ये आरजू थी, कोई दिल रूबा मिला और सार्वजनिक थे कि ये तुम्हारे चाहने वाला खुदा दुनिया में ये वाला गाना मेरा पसंद के सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जितने भी दोस्तों ने फीडबैक दिया, पसंद किया, उनको भी शुक्रिया। गजानन जी लिखते हैं महेंद्र कपूर और शर्मा आगा की आवाज़ में बेहतरीन गाना सुनाने के लिए धन्यवाद देते हैं। और अकाजा से अकाजी लिखते हैं कि अब तक तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले, गाना बहुत अच्छा लगा है। राहुल पासी जी लिखते हैं दिल की आरजू थी कोई दिलरुबा मिले, गाना बहुत ही प्यारा है। और ओके, और यहाँ पे प्रियंका जी लिखते हैं कि ये भी एक बहुत ही खूबसूरत गाना है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है अर्पिता जी का है, अर्पिता जी सुनना चाहती हैं हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। बिल्कुल सही कहा आपने, एंजॉय कीजिए इस गाने को। ओह माय गॉड, फिर डाउनलोड नहीं हो पाया।
1: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार 90s एंड न्यूज स्पेशल में सुनिए 1986 से लेकर आज तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
0: एंजॉय कीजिए।

और मुझे इससे नीचे किस्मत पर वो गाना मुझे याद आ रहा है, यानी किस्मत में लिखी वही बात हो तुम, गाने की डिमांड अभी तक नहीं आई, ओ माई गॉड। और राधा कृष्ण गोपी लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि हर किसी को नहीं मिलता प्यार जिंदगी में, लाजवाब डिमांड। और काजल सकाची लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है बिल्कुल। और गजानंद जी लिखते हैं अर्पिता जी की पसंद बहुत ही शानदार लगी है, धन्यवाद देते हैं अर्पिता जी, और बहुत दिन बाद आई है जी, वेलकम है उनका। और ये फिर बैठ

ओके जी, और यहाँ पे ये फीडबैक है, अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा गाना लगा, सुनकर मजा आ गया है। और गोपाल परिदास जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। राहुल पासी जी लिखते हैं कि हर किसी को नहीं मिलता प्यार जिंदगी में, गाना बहुत ही प्यारा लगा है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है अनिल कश्यप जी का है, रहे ना रहे, सुनना चाहते हैं ये गाना, इंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल रहिएगा, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं रहिएगा। फिलहाल फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं, सुनते हैं अनिल कश्यप जी क्या कहते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, एक बात पूछूं?
0: हाँ हाँ पूछिए, दो पूछिए।
1: अच्छा, ऐसा क्यों होता है जब कोई अगर अच्छे से काम करता है तो उसको ही ज़्यादा काम कराया जाता है? बताइए, मुझे 7:30 बजे तक घर आ जाना होता है, लेकिन आज 9:15 हो गया है और अभी मैं घर पहुंच रहा हूँ। बीच बीच में एक प्रोग्राम सुन रहा था, फीडबैक दे रहा था, कभी नहीं भी दे रहा था, तो क्या ये अच्छे से काम करने का फल है क्या?
0: जी देखिए, एक्चुअली जो लोग अच्छे से काम करते हैं ना, उन पर जो उनका बॉस होता है ना, उनको विश्वास होता है, भरोसा होता है कि ये इंसान अगर इसको कोई काम दे तो वह इनकार नहीं करेगा और उस काम को अच्छे ढंग से कर पाएगा। और बाकी लोगों को विश्वास नहीं होता है ना, क्योंकि वो उस यानी कि काम को दिल से नहीं करते हैं, मतलब यानी कि टालने की कोशिश करते हैं, अपना वो देह चोरी वाला काम करते हैं, समझ लीजिए। मतलब वो इसलिए, चूँकि आप अच्छे और ईमानदारी और अपनी यानी कि दिल से मेहनत करके लगन से काम करते हैं, इसलिए वो यानी कि कोई भी चाहता है कि आप अधिक मतलब वो काम आपको दिया जाए, इसलिए वो काम आपको दिया जाता है। इसमें ये तो आपके लिए अच्छी बात है ना कि आप पर विश्वास किया जाता है आपको, इसलिए अपने काम पर, अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदारी बरतते हुए अपने काम को करें। यानी कि वो कहते हैं ना, आप अपना यानी कि काम किए जाइए और फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि फल देने वाला तो ऊपर वाला होता है। फिर देख शामिल करते हैं इनका। क्या हुआ है, आवाज बहुत सुलवा रही है आपकी, यानी प्रियंका जी, लगता है कि गला बैठ गया आपका। शर्मा जी लेते हैं कि द रियल ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग, ये ममता फिल्म का लगा, ये लता जी की आवाज में बहुत ही बेहतरीन शानदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच, ओल्ड इज गोल्ड जिंदाबाद। और काजल झका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि रहे ना रहे हम, गाना बहुत ही अच्छा लगा है। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि यह सुबह होती है और सूरज निकलने के बाद शाम होती है रेडियो हॉटस्टार पर, और अमन जी के प्रोग्राम आने के बाद। अच्छा, थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड के साथ साथ अभी यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि लता मंगेशकर की आवाज़ में गाना बहुत ही प्यारा लगा है। और गीता जी लिखते हैं कि लाजवाब गाना है जी। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो नीतू शरण जी का है, हम इंतजार करेंगे। बिल्कुल इंतजार करते रहिए, गाना प्ले कर दिया आपका।

जी बिल्कुल, और दो दोस्तों ने भेज दिया है, हमारे रवि मोहड़े जी भी और यानी कृष्णा जी भी। तब तो गाना जरूर प्ले करने वाला हूँ कि किस्मत में लिखी कोई बात हो तुम है। ये गाना मेरा फेवरेट है, आज का दिन ये गाना ना प्ले हो सच में इसके बिना अधूरा अधूरा सा लगता है। और इसके ये गाने के बाद मैं प्ले करने वाला हूँ, क्योंकि एक अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो सोनू जी का प्ले करने वाला हूँ, वो दयावान मूवी का, कि आज फिर तुम पे प्यार आया है। उसके बाद वो गाना मैं प्ले करूंगा, किस्मत की लिखी तुम कोई बात हो तुम। फिलहाल फीडबैक मेरे पास है, शाहनवाज जी लिखते हैं कि ये बहू बेगम का बहुत ही शानदार गाना है, और नीति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस लाजवाब पसंद को पसंद करने के लिए। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि आपने मेरे गाने को प्ले किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गजानन जी लिखते हैं कि हम इंतजार करेंगे, ये गाना बहुत ही शानदार लगा है, धन्यवाद देते हैं। और अजय कुछ लिखते हैं कि अजय कुछ आपने आपका गाना मेरे पास नहीं आया है, देखिए आप गलत कर दिए होंगे, शायद नहीं आया मेरे पास। संगीता मुर्गा जी लिखते हैं कि ये गाना जिसने भी फरमाइश किया है, थैंक यू सो मच इतना प्यारा गाना का डिमांड करने के लिए। ये नीतू सरन जी का गाना था। काजल जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना है जी, बिल्कुल। तो अब सुनते हैं ये सोनू जी का गाना, आज फिर तुम पे प्यार आया है, दयावान का ये गाना जो मुझे बेहद पसंद है।

बिल्कुल, आज फिर तुम पे प्यार आया है और बेहद और बेशुमार आया है। फीडबैक शामिल करते हैं प्रियंका जी का। आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, यानी प्रियंका जी लग रहा है कि आवाज बैठ गई आपकी। और गजल अंजलि सिंह, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है, बहुत ही प्यारा देवान का गाना लगा है। गजल जगा जी लिखते हैं, बहुत ही प्यारा गाने के लिए धन्यवाद देते हैं। और सोनू जी लिखते हैं, थैंक यू सो मच अमन सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और राहुल पासे जी लिखते हैं, ये देवान का गाना बहुत अच्छा लगा। इसी बात पर अगला जो दो डिमांड दोस्तों की है, रवि मोहड़े जी और यहाँ पर रिश्ता जी की, तो सुनवाते हैं दोनों की पसंद का ये गाना जो मुझे बेहद पसंद है। ये गाना मेरे दिल के इतने करीब है कि हर सोमवार को अगर न प्ले किया जाए तो समझ में लगता है कि बिल्कुल प्रोग्राम अधूरा अधूरा सा है। तो सुनवाते हैं इस गाने को, सुनिएगा।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और फीडबैक सुनते हैं, क्या कहते हैं।
1: इस भरे शहर में अकेला था, इस भरे शहर में अकेला था।

0: अपना चांद गिर आया मेरे सीने में, तुमको पाया तो सब कुछ पाया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। ये गाना बहुत ही लाजवाब, दिल से धन्यवाद है फरमाइशकर्ता को। मैं सुनील कुमार बांका बिहार से।
1: धन्यवाद देते हैं आपको। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि दोस्त रवि महर जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए। और सोनू जी लिखते हैं कि भाई एक दिन में एक ही गाना प्ले होता है, दो नहीं प्ले होता है, ठीक है। और अजय कुछ लिखते हैं कि अच्छा ओके, ओहो आप भाई आप गाने के बोलते वहाँ पे अपना नाम तो लिखा कीजिए, जहाँ पे फिल्म का नाम वहाँ पे लिखा है ये शिकार, वहाँ पे अपना नाम लिखा कीजिए अजय कुछ, तब ने मैं समझूंगा कि आपका डिमांड है, कहीं नाम आपने लिखा ही नहीं है। वैसे अगला डिमांड आप ही का प्ले होने वाला था, टेंशन मत लीजिए अजय कुछ जी। अच्छा हुआ कि आपने मैसेज कर दिया मुझे। नागेश्वर ढाकर जी लिखते हैं कि लिखते हैं ये इनकी इमोजी देखकर मुझे हंसी आ रही है, लिखते हैं यानी प्रेम की बुझती लोगों को फिर से एक बार जला दो, मैं सर झुकाए रहूंगा और मुझे इसका गाना सुना दो। धन्यवाद देते हैं। राहुल पाचित जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और ये फीडबैक सुनते हैं क्या कहती हैं।
2: सर मैंने ये कहा था कि जो मैं भी ऑफिस में वर्क करती हूँ और जो मेरे सीईओस है वो भी मुझ पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। हाँ। और वो जानते हैं कि प्रियंका बहुत ही जिम्मेदारी से अपना वर्क करती है।
1: हाँ।
2: और जिन भैया ने बोला है कि उन पे ज़्यादा काम का वर्धन दिया जाता है तो वो उसी को ही दिया जाता है जो समझदार होता है।
1: हाँ।
2: और जो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाता है। जो आपने बात उन भैया को कही है इसी बात के लिए अमन जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ।
1: थैंक यू सो मच। लेकिन आपकी आवाज़ इतनी स्लो क्यों आ रही है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और काजल झका जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और संगीता अम्बुलकर जी लिखते हैं ये प्यारा गाना तो हमने पहली बार हॉट स्टार पर ही यानी सुना है और हमेशा मैं यानी कि सुनती हूँ तो ये मेरा भी फेवरेट गाना में से एक बन गया है जी, बिल्कुल। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि अब किसी से ये वफा पाने की हसरत नहीं रही, इस दिल इस कदर ये टूट गया है कि दर्द बताने की ज़रूरत नहीं रही। नहीं, बता दीजिए। और रवि महर जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। निशान राय बोले जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है, इसी बात पर अगला जो डिमांड है अजय कुछ जी का है, सुनना चाहते हैं ये गाना तो इन्जॉय कीजिए।

0: उफ, पेट्रोल खत्म हो गया।
1: मेरे सरकार मेरी आहों का असर देख लिया।
2: अच्छा
3: हाँ।

0: किरण मेरी बात तो सुनो।
1: सुनाओ जाकर अपनी चहेती को, मुझसे तुम्हारा क्या वास्ता, क्या उसी के पास? छोड़ दो मेरा हाथ, मैं कहती हूँ छोड़ दो।
2: नहीं छोड़ूंगा।
1: वरना
2: माता कुछ नहीं करूँगा।
3: प्यार सच्चा हो तो ये वक्त भी रुक जाता है।
1: वक्त चाहे रुक जाए, मैं नहीं रुकूंगी।

0: सुनता हसीनों को गुस्से से लोगों को होश आवाज उड़ जाते, लेकिन आपके गुस्से से तो गाड़ी का पेट्रोल उड़ गया। देखिए उधर मत जाइए, रास्ता बहुत खतरनाक है, जंगली जानवर बहुत मिलते हैं।
1: हुआ करे, तुमसे ज्यादा खतरनाक तो नहीं होगा।
2: अच्छा,
3: आ गए आपके कदमों पे उतर कर बादल।
1: जाओ जाओ, मुझे न बनाओ।
3: बन गई।
2: अरे मैं रोबोटिक इंसान हूँ यार, खतरनाक नहीं हूँ।

बिल्कुल गाना बहुत प्यारा लगा है और अजय कुछ रीते हैं, थैंक यू सो मच अमन जी गाना प्ले करने के लिए, और अनिल कश्यप जी रीते हैं अमन सर जी, और यानी कि प्रियंका जी, आप दोनों की बातों से मैं सहमत हूँ और थैंक यू गाइडलाइंस देने के लिए, धन्यवाद। ये फीडबैक सुनते हैं, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, आई एम सॉरी, यानी प्रियंका जी। गजानंद जी लिखते हैं अजय कुछ जी के पसंद ओल्ड इज गोल्ड, शानदार, धन्यवाद देते हैं उनको। राहुल पासे जी लिखते हैं कि ये गाना बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद देते हैं अजय कुछ जी को। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं बहुत ही लाजवाब डिमांड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन, जी बिल्कुल सही कहा आपने, और मंगेश दसमुख जी लिखते हैं कि सभी गाने ओल्ड इज गोल्ड सुपर सुपर सुपर बज रहे हैं। फिलहाल अगला जो डिमांड है हमारे दीपक कुमार गायकवाड़ जी का है, इन्होंने एक सपना देख लिया एक दिन, तो सुनवाते हैं क्या गाना है इनका भी, गोलमाल का।

0: सम कहां, तुम कहां, हम कहां, ताल कहां, सम कहां, तुम कहां, हम कहां, तेरे कर तुम, नान कर तुम, तेरे कर तुम, नान कर तुम, हम तुम, नताफात, ठिपाता, लताफात, पताफात, मेरा कस करामत,
1: ताते ठेता, ताते ठेता, ताते ठेता, ताते ठेता, थैया, थैया, थै, तकतदुम, तकतदुम, तकतन्या,
2: सपने में देखा सपना, ओ सपने में देखा सपना।
3: वेलकम बैक, और फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं। और अजय कुछ जी, जो आपने गाना भेजा है, शायद हो सकता है कि मैं उल्टा पुल्टा गाना प्ले कर दूं, क्योंकि ये पर्दा हटा दो मुझे मिल पा रहा है। हो सकता है कि अगर पॉसिबल है तो उसका लिंक आप मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा आपके गाने को प्ले करने के लिए। फिलहाल फीडबैक मेरे पास बहुत सारे हैं। अजय कुछ, और यहाँ पे बाबूलाल जी लिखते हैं कि अजय कुछ गाना मुझे बहुत ही धमाल लगा है, अच्छा। और गजानंद जी लिखते हैं कि ये दीपक कुमार गायकवाड़ जी की पसंद बहुत ही बेहतरीन शानदार लगी है। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है जी, बिल्कुल। और यहाँ पे प्रियंका जी का फीडबैक।
4: हेलो सर, मैं ये कह रही हूँ कि आज मेरा फास्ट है तो आवाज़ नहीं निकल रही है, बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकाली की।
3: अच्छा।
4: बात मैंने बोली है और एक सॉन्ग था, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है, तुम दयावान देवता हो मेरे, तुमको पूजू कि तुमको प्यार करूँ, तुमको पाया तो खुद को पाया है, यही सॉन्ग में सुना रही थी पर।
3: अच्छा, फास्ट के लेकिन आवाज नहीं आ रही थी आपकी, बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच दीपक कुमार गायकवाड़ जी को। शिल्पा बहन जी लिखते हैं अब तक के जितने भी गाने प्ले हुए हैं सभी बहुत ही बढ़िया बढ़िया, सभी गाने सुपर एक्सीलेंट है, और सभी को थैंक यू सो मच अच्छे अच्छे गाने की रिक्वेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं बहुत ही शानदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। इसी बात पर ये फीडबैक सुनते हैं।
5: अमन जी, आपने मेरा गाना बजाया, मजा आ गया, दिल खुश हो गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, शुक्रिया, सायोनारा।
3: ओके, धन्यवाद। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे, वो रवि लोधी जी का है, सुना चाहते हैं ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी, एंजॉय कीजिए।

जी रहे हैं सभी। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें, गाना बहुत प्यारा लगा। गजानंद जी लिखते हैं रवि लोधी जी के पसंद, ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें, गाना बहुत प्यारा है। और प्रियंका जी लिखते हैं कि ये गाना भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये रवि लोधी जी की पसंद शानदार लगी है। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि बहुत ही कमाल का गाना है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है बाबूलाल अंजाना जी का है, सुनना चाहते हैं। बताओ तुम्हें प्यार कैसे करूं, मुझे प्यार करने की आदत नहीं है। मुझे

और रात से मुझे गाना याद आ रहा है कि गोपाल जो यानी परिदार जी उनका गाना प्ले करना है मुझे आधी रात को। तो भाई गोपाल परिदार जी गाना मैं आपका प्ले कर रहा हूँ कि मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। इंजॉय कीजिए गोपाल परिदार जी, और फिर आते हैं तो फीडबैक शामिल करता हूँ मैं। ओके, तो आधी रात को ये गाना इंजॉय कीजिए।

बिल्कुल मेरे पास अब मैं यानी कि लॉटरी निकाल रहा हूँ और दो निकालूंगा, दो दोस्तों का नाम अगर जिनका भी आ जाएगा मैं उन्हें कॉल लगाऊंगा। लेकिन आप लोग रेडियो हॉट के एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा क्योंकि ऐप से ही मैं कॉल लगाने वाला हूँ। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है, मजा आ रहा है सुन सुन के। और अजय कुछ लिखते हैं कि थैंक यू सो मच गाना प्ले करने के लिए। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि धन्यवाद अमन सर जी, आपने मेरा भी गाना प्ले कर दिया है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये सभी गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, सभी को धन्यवाद। और जलील जी शायद ही प्ले हो पाएगा, सॉरी। निकला जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन गाना चल रहा है, धन्यवाद। और राधा जी से गुप्त लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत बहुत शुक्रिया। और गजानंद जी लिखते हैं कि अजय कुछ जी की वजह बेहतरीन लगी है। और ये फीडबैक आवाज बहुत सोलो है, यानी प्रियंका जी सॉरी। अगला जो डिमांड है यानी मंगेश देशमुख जी का है, उनका पूरा ग्रुप का है, तो ये सुनना चाहते हैं ये गाना, इंजॉय कीजिए। और इस गाने के बाद मैं नाम अनाउंसमेंट करने वाला हूँ।

और दो नाम सामने आए हैं, एक हमारे गजानन सुरकार जी हैं और एक इन प्रमोद कुमार जी हैं। दोनों को बधाई हो। और एक गाने के बाद आप दोनों को मैं कॉल लगाने वाला हूँ। और प्रमोद जी लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और गजानन जी लिखते हैं कि दोस्त मंगेश देशमुख जी की पसंद शानदार लगी है। राहुल पासी जी लिखते हैं कि जाने कैसे कब कहाँ ये वाला गाना बहुत ही प्यारा लगा है। और यानी प्रियंका जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है तो

0: पलके चुराए आधी रात को।
1: बिल्कुल, और यहाँ पे शिल्पा बेन जी लिखेंगे और प्यार हो गया गाना बहुत ही अच्छा लगा। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो शिल्पा बेन जी का है, प्ले करने वाला हूँ। दिल ढूंढता है फिर वही फुरकत के रात।

गजानन सुलकार जी, बहुत बहुत वेलकम है, कैसे हैं आप? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? गजानन सुलकार जी, यहाँ पे कॉल तो कनेक्ट हो चुकी है लेकिन आवाज आपकी नहीं आ रही है। वॉल्यूम बढ़ाइए या कुछ देखिए, टिप टप कीजिए। हेलो गजानन जी, मैं दोबारा कॉल लगाता हूँ।

0: जी प्रमोद जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका। हेलो, कुछ तो प्रॉब्लम है क्योंकि हेलो आवाज आ रही है मेरी।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कैसे हैं प्रमोद जी? आवाज तो आई थी आपकी, फिर क्या हुआ? जी प्रमोद जी, कैसे हैं आप? हेलो, आवाज तो आई थी आपकी। हेलो हेलो हेलो प्रमोद जी, हेलो हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम है आपका, इसीलिए नहीं तो बात जरूर होती।

फिलहाल मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी है, एक्चुअली कुछ ना प्रॉब्लम है। मैं एक बार फिर से ट्राई करूंगा आप दोनों के लिए, नो प्रॉब्लम। फिलहाल अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला दो दोस्तों का है, एक हमारे इन विष्णु चंद्र जी का है और एक निशांत राय भोले जी का है। दोनों एक ही गाना सुनना चाहते हैं, तो मैं सुनवा रहा हूँ इस गाने को, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है।

और मैं बता दूं कि मैंने एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से यानी टेस्ट किया हुआ है और बहुत दोस्तों से बातें भी हुई हैं। अगर यानी किसी की आवाज़ नहीं आ पा रही है तो शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ यानी प्रॉब्लम ज़रूर है, तो एक बार ज़रूर उसको यानी चेक कीजिए। मैं दोबारा एक बार आपको कॉल लगा रहा हूँ गजानंद जी, और ये लिखते हैं कि आपकी आवाज़ तो आ रही है लेकिन मेरी आवाज़ नहीं जा पा रही है, तो शायद हो सकता है कि वहाँ पे जो दो ऑप्शन होंगे, एक तरफ जहाँ पे वॉल्यूम वाला पे, उस पर एक बार यानी क्लिक करके फिर दोबारा क्लिक कीजिएगा, तो हो सकता है कि आपकी आवाज़ आने लगे। फिलहाल एक बार दोबारा कॉल लगाता हूँ मैं आपको।

0: हेलो
1: जी गजानन जी, आवाज आने लगी। बहुत बहुत आपको बधाई हो आज के विनर बनने के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अभी आवाज आ रही है?
1: बिल्कुल आवाज आ रही है, मुझे पता है आपकी आवाज सुनाई दे रही है मुझे। हाँ जी
2: हाँ, आपकी भी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। पहले बार क्या हो गया सर जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही थी और मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही थी।
1: नहीं आ रही थी,
2: तो क्या मालूम।
1: हाँ, अब कुछ यानी कि प्रॉब्लम हुआ होगा। नो प्रॉब्लम, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं? ऐप में प्रॉब्लम नहीं है, ऐप को मैंने बहुत अच्छे से बनाया है।
2: हाँ। अच्छा, तो प्रमोद कुमार को भी वैसा ही हुआ था सर जी, क्या मालूम क्या होगा।
1: बिल्कुल हो सकता है, उनको भी मैं एक बार दोबारा कॉल लगा दूंगा। तो अभी आवाज बराबर आ रही है ना?
2: अभी आवाज क्लियर आ रही है सर।
1: हाँ,
2: बहुत बढ़िया आवाज आ रही है आपकी।
1: आपकी भी आवाज बिल्कुल अच्छी आ रही है। तो सबसे पहले आपको बधाई हो, और आज आप क्या सुनना पसंद करेंगे?
2: और किशोर कुमार का बहुत ही बढ़िया गीत है सर जी,
1: बता दीजिए।
2: महबूबा फिल्म का, मेरे सावन भादो फिर भी मेरा मन सा, एक ही सुना दीजिए सर
1: जी। मैंने सुना दिया।

0: फिलहाल अगला कॉल लगा लेते हैं जल्दी से, यानी प्रमोद जी को। इस बार उम्मीद है कि इनकी भी आवाज आ जाए, क्योंकि इससे पहले तो नहीं आवाज एक बार आई थी। जी प्रमोद जी, नमस्ते, और कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है सर। आप बताइए सर।
0: एकदम झक्कास बिंदास, और हम तो एकदम बहुत ही स्मार्ट हैं। जरा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए अपना।
1: हेलो,
0: वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम
1: बढ़ा हुआ है सर।
0: अच्छा ठीक है, तब तो कोई बात नहीं। तो बताइए आज क्या सुनना पसंद करेंगे? नेटवर्क डिस्चार्ज है। आपका नेटवर्क डिस्टर्ब है इसीलिए डिस्कनेक्ट हो रहा है। नो प्रॉब्लम, गाना लिख के भेज दीजिए मुझे, और फिलहाल अगला डिमांड में प्ले करने वाला हूँ, और ये यानी कि कायनात जी का है। कायनात जी एंजॉय कीजिए।
2: यूं ही तुम मुझसे बात करती हो,

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल शो आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार 90s एंड न्यूज स्पेशल में सुनिए 1986 से लेकर आज तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: वेलकम है रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और हमारे यानी कि प्रमोद जी का जो डिमांड आ चुका है मेरे पास, तो चलिए उनके गाने को मैं प्ले करता हूँ, एंजॉय कीजिए।

ओके, तो इसी गाने के साथ मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे 90s न्यू स्पेशल में। तब तक लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय। ख्याल रखिए अपना, सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे।

0: क्या है चित चोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चित चोर?
1: You sing like Kishore, but शादी का दे.
0: Oh yes, September 8.
1: Oh, very late.
0: Darling, wait.

0: सच है बिल्कुल।
1: तू है बुलबुल।
0: सच है बिल्कुल। यू आर वंडरफुल।
1: लग जा गले ए, लग जा गले, दुनिया जले। छम छम छम छम छम छम। ए गर्ल, हम तुम पे दिल निसार करता है, रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है,

जब दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया। दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थीं और दिल धड़क धड़क के कह रहा था कि जॉनी बेटे, तेरी मंजिल यहीं पर है। लेकिन याद रख, अगर इन्हें मालूम हो गया कि तू चोर है, उचक्का है, छोटी मोटी चोरियों के इल्जाम में बार बार जेल जा चुका है, तो इन हसीन आंखों में तेरे लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं रहेगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: ख्यालों में जय हंगामा, कहां भाग रही थू मैं?
1: या अल्लाह,
0: काले से डर गए क्या?
2: हमें काले हैं तो

ताले ताक जम ताक ताले ताक जम ताक धला आंगो ताक जगे ताक ताले के नाक ताक नाक ताक जम ताक नाक नाक जम ताक नाक नाक जम ताक नाक नाक जम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को तारी ता को तारी के ने ताले तारी ता जग तारी ता जाने जाने को तारी ता को तारी के जम तारी

हिला को रख डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह मेरी मदद कर। अल्लाह मैं कुट्टी को छोड़ूंगा नहीं। मैं अल्लाह

अनेक